बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

जेड़े भी दिन होवे ओह दिन हुंदा यारो ईद वर्गा, लखा अकबरी हज्जा दा नहीं हुंदा जेड़ा मजा ए बाबा दी दीद वर्गा। सिफत यार दी करा ते करा कीवें, मुखड़ा है कुरान मजीद वर्गा।

0: Assalamu alaikum. It's really nice to listen to your show. Some of the stuff you talk about is very intellectual in different languages, but I get the gist of most of it, and I like listening to the different tunes that you play.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@ourzfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: ये ज़ुल्फ़ें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये ज़ुल्फ़ें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं, सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं मैकदों में वीरानी सी छा गई है मैकदों में वीरानी सी छा गई है यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है नज़रों के प्यालों से छलकते जामिए नज़रों के प्यालों से छलकते जामिए हर सू मैकशों की बाढ़ लगा रखी है हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है शुक्रिया
9: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver. Driven.

0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।
1: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more, just search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए, आप अपने आवाज़ FM पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ FM के साथ।
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
6: Radio, the medium that's now large.
7: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
8: I know, how do we get Finnish listeners?
9: I don't know.

0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। सलाम,
1: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी, शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिस्नर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिस्नर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिस्नर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से। मेहरबानी, आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ। बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत है, मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
0: और अजमल साहब, इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये एक काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच, और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें, और उम्मीद करता हूं कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहां पर, उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी बखैर।
0: Thank you very much, ji. Take care. Allah Hafiz. Bye-bye.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio. The medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
5: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
6: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
7: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।
4: Hours FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website hoursfm.co.uk.

0: मसीह यीशु में आप सबको वेलकम करते हैं। खुदावंत का बहुत शुक्र है, उसने आज हमें एक और मौका दिया है कि खुदावंत के प्यार को आपके साथ बांट सकें। और मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आज उन सबको हम वेलकम करते हैं। और ये खुदा का हुक्म है कि एक दूसरे से प्यार रखो, एक दूसरे से मिल जुलते रहो और एक दूसरे की खिदमत करते रहो। ये खुदावंत ने हमको हुक्म दिया है और हम उसके हुक्म को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। खुदावंत आप सबको बरकत दे। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले रॉबर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि इस पूरे प्रोग्राम को खुदावंत के हाथों में दें, ताकि कोई ऐसी बात इस प्रोग्राम में ना हो जो खुदावंत हमारे यीशु को पसंद नहीं है। तो रॉबी भाई, आप दुआ करें।
1: खुदावंत, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंत जी। हम सबको, पूरी टीम को मौका मिला के तेरे जलाल को जाहिर करें। हमारी सबसे पहली दुआ यही है खुदावंत कि हमें सबको पाक रूह के इख्तियार में कर, पाक रूह की जो ताकत है, शक्ति है, कुदरत है, उसके सबको हवाले कर। हमारी जुबान और लबों पे खुदावंत तेरा पैरा हो, ताकि कोई भी हमारे मुंह से गलत बात ना निकले जिससे सुनने वालों को किसी को भी ठेस पहुंचे। जो कुछ निकले वो सच्चाई हो। सच्चाई को लोग कुछ भी कहें, हम वो बदल नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चाई खुदा की तरफ से आई है, क्योंकि खुदा का कलाम पाक रूह की ताकत से लिखा गया है। खुदावंद हमारी सबकी दिली दुआ है कि सबकी मदद कर, हम जो कुछ करें खुदावंद मोहब्बत से करें और मोहब्बत से बोलें, ताकि इस प्रोग्राम का जो हकीकी मकसद है वो पूरा हो। हर एक बहन भाई को मैं तेरे हवाले करता हूँ। और खुदावंद हम गीतों के जरिए, कलाम के पढ़े जाने के जरिए से हमारी दुआ जो बोली जाए, जो कुछ हम अब बोले खुदावंद, लोग बड़े गौर से सुने। हम फिर एक बार रेडियो आवाज के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसके वसीले से ये खिदमत का काम चल रहा है। और खुदावंद जो भी उनकी बिजनेस से जरूरियात हैं खुदावंद, तो पूरी कर और ये रेडियो प्रोग्राम चलता रहे। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुनो, कबूल कर ले। खुदावंद हम तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो कबूल कर ले। आमीन
0: आमीन। आइए टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। हे लोगो, आओ सब मिलकर गाएं यीशु की जय। यीशु की जय हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। उसका नाम सब नामों से ऊंचा है और हम उसकी प्रसिद्ध और सिताइश के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आइए उसकी वडियाई करें।

0: मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं, और अगर मुझे नबूत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, जुबाने हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद अपने पाक नाम के पढ़ जाने पर बरकत दे। आमीन
1: आमीन। खुदावंद की सिदाइश के लिए और उसके नाम की शान के लिए मैं एक नज़म आपके लिए पढ़ने वाली हूँ, तो गौर कीजिए और इंजॉय भी कीजिए। मेरा यसु है खुदा, मेरी सुनता है दुआ। मेरा यसु है खुदा, मेरी सुनता है दुआ, मुआफ करता है गुनाह, मुझको देता है शिफा। मेरा यसु है खुदा, उसका रुतबा है जलाली, उसकी शान है नराली, यसु दुनिया का वाली, हमसे करता है वफा। मेरा यसु है खुदा, शाफी दुनिया में है आया, अपना प्यार है दिखाया, शाफी दुनिया में है आया, अपना प्यार है दिखाया, खून यसु ने बहाया, सूली पर है वो चढ़ा। मेरा यसु है खुदा, यसु दुनिया का है शाफी, देता सबको है वो मुआफी, यसु दुनिया का है शाफी, देता सबको है वो मुआफी, उसकी कुर्बानी है काफी, मुआफ करता है सजा, उसकी कुर्बानी है काफी, मुआफ करता है सजा। मेरा यसु है खुदा, उसका प्यार है निराला, हर कोई उसका है मतवाला, उसका प्यार है निराला, हर कोई उसका है मतवाला, हमको पाप से निकाला, दुख से करता है रिहा। मेरा यसु है खुदा, बहुत शुक्रिया।
2: आइए एक बहुत ही प्यारा गीत सुनते हैं, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यसु में बने रहो, रू में गाओ, रू में झूमो, यसु में बने रहो।

दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ नशरियात हैं जो आपको बताई देती हूँ। संडे की इबादत के लिए 10:30 बजे इबादत शुरू होती है। आप भी आएं और इस मौका से फ़ायदा उठाएं, इबादत में हिस्सा लें, खुदा उनसे बरकतें पाएं, क्योंकि वो आज हम सबको बरकतें देना चाहता है। अब वक्त हुआ चाहता है कि खुदा उनके सामने अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी अर्ज़ें और मुनरतें पेश करें। ऐ खुदावंद रहीम और करीम आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं कि तू हमारा बादशाह है, तू सजदे और सिताइश और परस्तिश के लायक है। खुदावंद, तेरा शुक्र है तूने हमें ये भी हक दे दिया है कि हम तुझे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं और अपनी जरूरतें, अपनी खुशियाँ, अपनी हर बात तेरे सामने ला सकते हैं। और खुदावंद, तेरे इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे पास हमारे लिए हर वक्त वक्त मुकर्रर होता है और तू हमारे लिए वक्त निकालता है और हमारी दुआओं को सुनता है। खुदाम बाप, आज के प्रोग्राम के लिए हम तेरा तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि शुरू से लेकर अब तक तू हमारा हामी मददगार रहा। जो गीत गाए तेरी बरसिश के लिए, खुदाम वो तेरे हजूर में कबूल हो। जो कलाम की बातें कलाम में से सुना है, खुदाम वो हमारे दिलों में घर घर जाए। और खुदाम आके दुआ मांगते हैं कि जब पादरी साहब इस कलाम को पेश करने वाले हैं तफसील से, तो खुदाम अपने रूह का मसा दे ताकि जो कुछ भी वो बोले खुदाम वो तेरे रूह की मदद से हो। और खुदावंद, हम तुझसे इल्तजा करते हैं कि तू कंटिन्यूसली हमें अपने पनाह में महफूज रख, हमारा साथ दे। खुदावंद, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं और भटक जाते हैं, लेकिन खुदावंद तेरा प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। खुदावंद, हमेशा तू हमसे प्यार करता रहता है। और खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसने खून बहाकर हमें गुनाहों से आजादी दे दी है। हम अपने नहीं बल्कि तेरे हो गए, तूने हमें कीमती खून से खरीद दिया है। खुदा हम तो हमारी मदद करके तेरे साथ साथ चलते रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। खुदा हम बाप, इस वक्त मैं उन बीमारों के लिए दुआ मांगती हूँ जो चाहे वो घरों में हैं, चाहे अस्पतालों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं। खुदा अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा, उनके ईमान के मुताबिक उनको शिफा दे ताकि जब वो शिफा पा जाए तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। और खुदावंद, इसी तरह मैं उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो अफसरदा हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। खुदावंद, उनको तेरी इत्मीनान और तेरी तसल्ली चाहिए खुदावंद, क्योंकि तू ही तसल्ली का सरचश्मा है। उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, उनकी जरूरतों को अपने इलाही खजाना से पूरा कर। खुदावंद, हम तेरे सामने सरनगु होते हैं और तुझसे इस बात की इल्तजा करते हैं कि खुदावंद तू इस लोगों के दिलों में नफरत की जगह तेरा प्यार उनके दिलों में हो, ताकि खुदावंद वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रह सके। खुदावंद, तू सब कुछ कर सकता है, इसीलिए हम तेरे सामने सरनगुण होते हैं और तुझसे मांगते हैं, क्योंकि तू मुआफ करने में सच्चा और आदिल बाप है। खुदावंद, हम रेडियो के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तूने हमें दिया है कि हम तेरे प्यार को दूसरे लोगों के साथ बांट सकें। खुदावंद, उनकी बड़ी मदद कर जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, चाहे क्रिश्चियन प्रोग्राम है चाहे और प्रेजेंटर है। खुदावंद, हर एक की मदद कर ताकि जो भी इस रेडियो पर प्रोग्राम आता है खुदावंद बाप, वो दूसरों की बेहतरी और बहबूदी के लिए हो। खुदावंद, आवाज क्रिश्चियन टीम के लिए भी मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि कितनी मेहनत से इस प्रोग्राम को तैयार करते हैं। और खुदावंद, उनके लिए दुआ मांगती हूँ जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। खुदावंद, उनकी मदद कर के अपने रियली दिलों से खुदावंद इस प्रोग्राम को सुने, और खुदावंद जो तू आज उनसे कहना चाहता है वो तेरी आवाज को सुनकर खुदा हम तेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ने वाले हैं। खुदा हम तेरा बहुत बहुत शुक्र करते हैं, और खुदा हमने जो मांग लिया है इसी मान से मांगा है कि तू हमें देगा, और अगर कुछ मांगना भूल गए हैं तो वो भी हमें हमारी जरूरत के मुताबिक अता फरमा। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा यसु मसीह के मुकदस और जलाली नाम में मैं सब कुछ मांग लेती हूँ, आमेन। हम एक गीत सुनते हैं, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंत की शिफा आती है, खुदावंत की शिफा आती है। खुदावंत का पाक रूह हम सबको हदायत दे और हमारी मदद करे और हमें अपने साथ साथ चलने की तौफीक दे। बहुत ही प्यारा गीत है, तो आइए सुनते हैं।

0: आइए खुदावंद के बंदा से आज के पैगाम की तफसील सुनते हैं। तो आज आप इंग्लिश में नहीं बल्कि उर्दू में ही सुनेंगे। तो इस वक्त कलीम हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि खुदावंद ने आज जो कलाम उनको दिया है वो खुदावंद के रूह के जरिए से हम तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ मेरी दरख्वास्त है कि हम अपने दिलों को खोलें और खुदावंद की आवाज़ को जो वो अपने बंदा के जरिए से हमसे कलाम करना चाहता है उसको सुने। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
1: मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने फिर मुझे मौका बख्शा है कि चंद मिनट आपके साथ कलाम मुकद्दस की बातें शेयर कर सकूं। आज हमने पौलुस रसूल के खतों में करिन्थियों की कलीसिया के नाम उसका पहला खत और उसके 13वें बाब की तलावत सुनी है, और ये पूरा बाब अपने मानी और मफहूम के बायस बहुत ही यूनिक है, और बहुत सारे बाइबल मुकद्दस के माहरीन इस बाब को लव चैप्टर का नाम देते हैं। पौलुस रसूल की खिदमत का अंदाज बहुत ही सिस्टमेटिक था और बहुत ही नज्मो जब्त के साथ मसीही तबलीग में वो हमेशा मगन रहता था। यानी अगर वो एक मुकाम से प्रीचिंग करके आगे बढ़ गया है, किसी दूसरी जगह चला गया है, और उसके माजी में जितने भी उसने दौरे किए, जिन कलीसियों में वो रहा उनको वो भूलता नहीं है, उनकी वो खबर रखता है और उनके बारे में सोच विचार करता रहता है और मालूमात हासिल करता रहता है। और पौलुस रसूल ने महसूस किया कि करिन्थस की जो कलीसिया है बहुत ही जोश और जज्बे के साथ खुदा की खिदमत में मसरूफ है। पौलुस रसूल ने देखा कि बहुत सारे लोग कलाम मुकद्दस को सीखने में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग इतनी कमिटमेंट के साथ खुदा के साथ मुंसलिक हो गए हैं कि वो गैर जुबाने बोलते हैं और लोग दुआ में मशगूल रहते हैं। और पौलुस रसूल ने यह भी महसूस किया कि लोगों के आपस में डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, और पौलुस रसूल ने मुनासिब जाना कि उनको एक खत लिखा जाए जिसमें चैप्टर 13 को शामिल किया जाए, जिसे लव चैप्टर कहा जाता है, और आज हम उस लव चैप्टर के बारे में चंद मिनट बात करेंगे। अगर आप 13वें चैप्टर की पहली वर्स से लेकर आखिरी वर्स तक आप देखें तो एक बहुत ही तेजी से ये फ्लो आगे बढ़ता है, और पौलुस रसूल बीच में इधर उधर की बात नहीं करता बल्कि एक ही फ्लो में एक ही मौजू को डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, और बड़ी शिद्दत से वो एक ही मौजू को हाईलाइट कर रहा है। और पौलुस रसूल लफ्ज़ अगर से शुरू करता है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, इसका मतलब ये है कि पौलुस रसूल करिन्थस की कलीसिया को कुछ समझाना चाहता है, उनकी कुछ बातों को हाईलाइट करना चाहता है, और उनको खुदा की तालीम का जो मरकज है यस्सु मसीह और खुदा और मोहब्बत उसके बारे में बयान करना चाहता है। और आप गौर करें कि पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक मोहब्बत से ही ये चैप्टर शुरू होता है और मोहब्बत में ही खत्म होता है। मिसाल के तौर पर लिखा है पहली आयत में, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच हूं। और आखिरी आयत, गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। सो कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर का मौजू मोहब्बत है। अब देखना है कि यह किस मोहब्बत की बात हो रही है। सामईन, पौलुस रसूल यहां पे खुदा की मोहब्बत की बात करता है जिसे ग्रीक जुबान में अगापे लव कहा जाता है, और ये जो लफ्स अगापे है ये मोहब्बत की वो शक्ल है, हाईएस्ट फॉर्म है, जिसमें जो मोहब्बत करने वाला शख्स है वो कंडीशंस अप्लाई नहीं करता, उसका अनकंडीशनल लव होता है। दूसरी बात अगापे लव की खूबी ये है कि ये सेल्फलेस है, यानी कोई मफाद इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से। और सबसे अनोखी बात कि अगापे लव जो है सेक्रिफिशियल है, इसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, और इसका इजहार हमें यूहन्ना रसूल की अंजील उसका तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत में मिलता है, जहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम अपनी इंसानी जिंदगी में अपनी इंसानी मोहब्बत को भी इसी मयार के साथ परख भी सकते हैं और उसे कायम भी कर सकते हैं। अगर हम इस बाब को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो 4वीं आयत में पौलुस रसूल ने मोहब्बत की खूबियां बयान की हैं। मसलन मोहब्बत साबिर है, यानी मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें पेशेंस सब्र होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत मेहरबान है, कंपैशनेट है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों को बर्दाश्त करती है, और अहम बात के मोहब्बत को जवाल नहीं। मोहब्बत को जवाल नहीं से क्या मुराद है? बाइबल मुकद्दस नया अहदनामा यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अभी हमने पहला करंथियों उसका 13 चैप्टर में उसकी 8वीं आयत में सुना है कि मोहब्बत को जवाल नहीं। मोहब्बत को क्यों जवाल नहीं? क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा को जवाल नहीं। पौलुस रसूल यहाँ पे बयान करता है और इस बात पे जोर देता है कि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत को जवाल नहीं, और मोहब्बत मसीही ईमान का मरकजी नुक्ता है। क्योंकि इसी चैप्टर में पौलुस रसूल कहता है, नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। अच्छा, और ये सारी बातें उस वक्त हो रही थी, लोग नबूवत कर रहे थे, जुबानें बोलते थे, फरिश्तों की जुबानें बोलते थे और बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर रहे थे, खुदा का इल्म उनको मिल रहा था। तो पौलुस रसूल इसीलिए कहता है कि नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। और आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको वाज़ह तौर पर एक डिवीजन नजर आएगी, एक तरफ मोहब्बत और बाकी तरफ सारे काम। जैसे कि वो लिखता है, पौलुस रसूल कहता है कि अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। और आज के दौर में यकीनन सबसे अहम जरूरत इसी बात की है। बहुत सारा इल्म भी बहुत है, लोग खुदा की बातें भी करते हैं, प्रीचिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, नबूवतें भी करते हैं, लेकिन अगर हम में मोहब्बत नहीं तो इसका मतलब है कि ये पौलुस रसूल का खत आज हमारे लिए है, ये उसका पैगाम, ये 13वां चैप्टर लव चैप्टर आज हमारे लिए है। क्योंकि वो आखिरी आयत में लिखता है, गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। सारी बातें लिख के आखिरी वर्स गर्ज से शुरू करता है। गर्ज, गर्ज का मतलब कि खुलासा ये है, नतीजा ये है, इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन का जितना कंपैरिजन है मोहब्बत वर्सेस दूसरी सारी चीज़ें, उनका जो कंपैरिजन करके पौलुस रसूल आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा है। और वो कहता है कि गर्ज यानी नतीजा ये है कि ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है। ईमान भी ज़रूरी है, उम्मीद भी ज़रूरी है और मोहब्बत भी, और तीनों दायमी है। दायमी से क्या मुराद? इनको जवाल नहीं, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी हमने पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8 आयत में देखा था कि खुदा मोहब्बत है, इसी तरह ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है, क्योंकि ये मोहब्बत के लबादे में ही आगे बढ़ती हैं। हमारा ईमान उसी वक्त ही मौसर मसीह ईमान है जब हमारे अमाल, हमारी बातचीत, हमारे एक्शंस में मोहब्बत जाहिर होती है, और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद यसु मसीह की तालीमात का प्रचार है और यसु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। जब हम यसु मसीह को कबूल करते हैं तो हम उस मोहब्बत को कबूल करते हैं जो खुदा की मोहब्बत है। हम खुदा को कबूल करते हैं क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और मेरा ईमान है कि अगर हम इन बातों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों में मोहब्बत को अहमियत दें तो आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में, हमारी कम्युनिटीज़ में, कांग्रीगेशंस में, सोसाइटी में और पूरी दुनिया में, मुल्कों में हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। और सामाइन, आज के दौर में हमें लव चैप्टर की ज़रूरत है। हमें पहला करंथियों उसके 13वें बाब की ज़रूरत है कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं और खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।
0: आमीन। बहुत शुक्रिया ब्रदर आज के अच्छे और खूबसूरत पैगाम के लिए जो आज आपने हमें बताया प्यार और मोहब्बत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इससे बरकत पाई है। एक और गीत सुनते हैं, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं काम होता हूँ।

0: दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अब मैं रॉबर्ट से दरखास्त करूंगी कि इस प्रोग्राम को दुआ के जरिए से खत्म करें। जी रॉबर्ट।
1: खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज सारे प्रोग्राम के लिए। खुदावन पाक रू की हजूरी के लिए, पाक रू की मदद के लिए, जिसके बगैर ये काम नहीं हो सकता था। हम शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए। हमारी दुआ है कि लोग उस पैगाम को अच्छी तरह समझें और रुजू लाएं, क्योंकि खुदावन की किसी की हलाकत नहीं चाहता। तू चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नबूत पहुंचे और आने वाले गजब से बच जाए। हमारी दिली दुआ है कि आज इस प्रोग्राम से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद फिर एक बार है, पूरी टीम के लिए हमारी दुआ है। हमें खुदावंद और भी इस प्रोग्राम में दिलचस्पी और इसमें खो जाने की भूख और प्यास से कि जब हम आते हैं तो खुदावंद हमारे दिल में रूहानी भूख और प्यास हो, क्योंकि ये काम जो कुछ कर रहे हैं हम खुदावंद तेरी ही मदद से कर रहे हैं। फिर शुक्र करते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए और जो भी दुआएं हुई हैं लोगों की जिस्मानी और रूहानी शफा के लिए, उसके लिए भी खास दुआ है कि लोग जिंदा खुदा की शफा को हासिल करें और ईमानों में तरक्की करें। फिर एक बार मैं दुआ करता हूँ रेडियो आवाज के लिए, खुदावंद जिसकी मदद से ये सब काम हो रहा है, सबको ब्लेस कर। खुदावंद मैं मांगता हूँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम से सुनो, कबूल कर ले। आमीन।
0: आमीन। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, और खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर आपसे इसी जगह इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। आइए आखिरी जबूर सुनते हैं। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा, मैं सदा तेरी बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। आइए खुदा के मुबारक नाम को जलाल देते हैं और उसके तारीफ में ये जबूर सुनते हैं। इसके बाद खुदा हाफिज। God bless you all.

0: उनके साथ वैसे ही सुनने से चलें, अपन हमें याद तो करते हैं, सुनते तो हैं
1: जी जी। और मैं काफ़ी दिनों से मेरी मुलाकात नहीं हुई अपने हरबी से
0: जी,
1: और पता नहीं वो खामोश क्यों हैं। मैंने बताया था उनको मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ
0: इसीलिए।
1: हाँ जी, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त सा नगमा जगजीत का
0: लीजिए।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: एक ज़बरदस्त गज़ल आपके लिए पेश करता हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी।

0: लीजिए सर, करोगे याद? तो मैंने कहा कि चले गज़ल ही ऐसी आपको ला के दूँ कि करोगे याद। तो इसी के साथ तो फिर लोग भी शायद हमें याद करेंगे।
1: हमने ये हमने मेरा बड़ा याद किया आपने हरवी महाराज को, और इसके लिए मैंने, अगर वो सुन रहे हैं,
0: आपने मांगा था आवाज़ जगजीत सिंह की, तो वो भी लगाता हूँ, लेकिन ये थी आवाज़ भूपिंदर सिंह।
1: हाँ जी, वो जगजीत की अगर लगा दें तो फिर सही।
0: वो भी लगा
1: जी, जी, वो जी। क्या कर रहा था मैं, हम क्या बातें कर रहे थे आजकल की ये हालात है
0: जी,
1: हाजरा पर जो सारी दुनिया में
0: जी जी
1: ओदम मची हुई है
0: जी जी,
1: और तो क्या करें हम लोग,
0: बस यू हैव टू, वो इंग्लिश में कहावत है ना कि ग्रिन एंड बेयर इट, कि साथ साथ चलना होगा, जीना होगा, और क्या कर सकते हैं,
1: मरना होगा, दोनों चलेंगे ना फिर साथ में,
0: साथ साथ।
1: ठीक है, चलो ठीक
0: जी
1: है।
0: जी जी,
1: ये मुझे कुछ गज़लें मिली हैं नासिर काज़मी की, आई लव हिज गज़लें, छोटी बहर की होती हैं और बड़ी लाजवाब जज्बात और एहसास से भरी पड़ी हैं इसकी
0: जी,
1: और उसकी एक गज़ल सुनाता हूँ, पुरानी गज़ल है
0: जी जी,
1: और आपको सुनाता हूँ, आपने नहीं सुनी होगी शायद
0: जी,
1: और शामीन ने भी नहीं सुनी होगी
0: जी,
1: तो हम तो शामीन को पता है कि हम इस वक्त शेर नगमा पेश कर रहे हैं, और मेरी कोशिश ये है कि अपनी शायरी के साथ साथ बड़े अच्छे अच्छे शोरा का कलाम भी आपके कानों तक पहुँचाऊँ। लीजिए, ये उसकी बड़ी पुरानी बड़ी मशहूर गज़ल है नासिर काज़मी की
0: जी, इरशाद।
1: तो सुनाता हूँ, फिर सावन की रुत पवन चली, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजेब बजी तुम याद आए, फिर कूंगी बोली घास के हरे समंदर में, रुत आई पीले फूलों की तुम याद आए, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए, पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा, बादल गरजा बिजली चमकी तुम याद आए, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप डली तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजेब बजी तुम याद आए। तो ये उसकी गज़ल थी, तो मैं उसकी एक और गज़ल यहाँ देखता हूँ, आई लव हिज पोइट्री, और उसकी शायरी भी बड़ी कमाल की है। ये एक और गज़ल इसकी, ये भी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आप जगजीत सिंह का कुछ ज़बरदस्त गाना
0: ठीक,
1: और मैंने इंटरव्यू उसका देखा भी कुछ दिन पहले,
0: किस जगजीत सिंह,
1: जगजीत को वो प्रोग्राम उन्होंने रिकॉर्ड किया, वो पुराना कोई, उसमें लोग उसको अपनी अदालत में लाते हैं और से सवाल जवाब करते हैं।
0: ठीक ठीक,
1: हाँ जी, आपने नहीं देखा वो?
0: नहीं, प्रोग्राम मैंने ये वाला देखा है,
1: उसमें यूट्यूब पे था
0: जी जी,
1: और उसके सारे जो उसने नोटी काम किए हैं, जो कुछ हैं बचपन में, वो उसकी साइकिल ख़राब हो जाती थी रास्ते में कॉलेज के सामने,
0: अच्छा,
1: लड़कियों से मिलने के लिए, और ये सारे सवाल उससे किए, फिर और बहुत सारी बातें की, और बड़ी उसने मासूमियत के साथ सब सवालों के जवाब दिए, और मज़ा आ गया, नहीं ऑनेस्ट आदमी था, और उसके बाद और भी बहुत सा, वो कभी ज़रूर देखें अगर देखें
0: जी, जी,
1: और बड़ा मज़ा आया उसमें
0: जी।
1: अच्छा, दिल में एक लहर उठी है अभी, ये उसी की एक गज़ल है
0: ठीक,
1: कोई ताज़ा हवा चली है अभी, शोर बपा है खाने दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, किसको लगेगा इस माहौल में, बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, सुकून ईमान प्यार मोहब्बत इसकी कमी है, तू शेरी के सुखन नहीं तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी, शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी,
0: वाह,
1: अब जिंदगी कहाँ मिलती है,
0: सही है,
1: अब तो वही मुहावरा अंग्रेजी का मुझे याद आता है, bigger the purse, bigger the man,
0: absolutely
1: okay. है ना, यही अनपढ़ समाज का
0: यही है आजकल तो।
1: पहले ये था इंसान की सबसे बड़ी उसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो ऑनेस्ट हो और हार्ड वर्किंग हो, ये उसकी अपनी दौलत थी जिसकी वजह से पहचाना जाता था। अब नहीं, अब जिसके पास जितने पैसे हैं उतने ही क्रुक है, उतने ही ऐश करता है।
0: ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है।
1: शहर की बेचराह गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, सो गए लोग इस हवेले के, लेकिन एक खिड़की खुली है अभी, कोई इंतजार कर रहा होगा ना,
0: कोई तो होगा,
1: कोई तो होगा ना, सब खिड़कियां तो बंद नहीं हो सकती।
0: एक आध तो खुली होती है,
1: बिल्कुल होती है। तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, शहर में रात जागती है अभी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न करो जिंदगी पड़ी है अभी,
0: अभी पड़ी है, बहुत
1: ये उसने पैगाम दिया है। और शायर हमेशा एक अच्छा पैगाम भी साथ में देता है, क्योंकि वो उम्मीद के दामन को नहीं छोड़ता, और यही उसकी
0: उम्मीद से दुनिया कायम है,
1: कायम है, लेकिन आजकल कुछ उम्मीदें कुछ कम हो गई हैं।
0: बस ये है कि
1: ये तो है ना,
0: कम हो गई हैं लेकिन खत्म नहीं हुई,
1: नहीं हुई। हाँ तो कहते हैं ये बादशाह वाली बात की ना। चलो अब तो आप
0: चले, आई थिंक आपके लिए फिर एक गजल लगानी पड़ेगी, बहुत सी प्यारी सी, और जगजीत
1: की। हाँ मेरा दोस्त भी इसको बड़ा पसंद करेगा,
0: तो लीजिए हरबी साहब आपके लिए भी।
1: हाँ जी,
0: और मकबूल साहब आपके लिए भी।
1: थैंक यू।

0: आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम।
1: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: Sameen, aapko ek baar phir yaad karte hain aur is waqt hum live program ke saath apne nagma ghar ke saath hum sher nagma pesh kar rahe hain. और हमारी कोशिश है कि आपको चैरअप करें और कुछ अच्छे शेर सुनाएं जो मैं कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। तो लीजिए आपको एक एक गज़ल उसकी मुनीर निराजी की है
3: जी, आई लाइक दिस वन।
2: मेरी सारी जिंदगी को बेअसर उसने किया। अब आप कहेंगे कैसे, मुझे पता था आपने ये कहना। वही जो करते हैं जो पता ही आपको, हाँ तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं, आपको भी उसी ने की है। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। हाँ जी, किया ना। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया।
3: उसी ने किया।
2: मैंने तो चांद से नहीं कोई देता
3: ना
2: पंजाबी में। अच्छा, मैं कमाल आपको बात बताऊं। जब मैं पहले पहले आया ना यहाँ साउथहैम्पटन में
3: जी।
2: तो मेरी वाइफ की सहेलियाँ कहती थी, पूछती थी, भाईजान आपका नाम क्या है असली नाम। मैंने कहा जी मेरा नाम मकबूल अहमद सैयद है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई तो उसी सैयद हो। 5 साल के बाद फिर किसी और ने फिर पूछा
3: जी,
2: भाईजान थोड़ा की नाम है
3: जी।
2: मैं कहा जी मैं जब आया सी 5 साल पहले मेरा मकबूल अहमद सैयद से नाम
3: जी।
2: कहती हूँ की नाम जी। अच्छा। मेरे कहा जी हूँ मेरा नाम खादिम हुसैन। ये हकीकत है, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अच्छा फिर 5 साल और गुजर गए
3: जी।
2: फिर किसी ने पूछा, भाई जी ना आपका नाम क्या है
3: जी।
2: मैं कहा जी मैं हूँ खदमत गुजार। तो ये मेरे 3 नाम रहे हैं।
3: सही।
2: हाँ जी, तो ये जिंदगी की कहानी अजीब गरीब होती है।
3: जिंदगी ने आपको नाम इस तरह के
2: दे दिए सबको देती है, क्योंकि जिंदगी किसी को माफ नहीं करती
3: जी,
2: है ना।
3: बिल्कुल सही है।
2: हाँ जी
3: जी,
2: आपका शुक्रिया जनाब
3: जी।
2: आप राइट, मेरी जिंदगी को बेसमर उसने, ये तो सारा सुनाया, मैंने नहीं सुनाई पूरी, है ना
3: जी जी।
2: अच्छा तो मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया।
3: उसने किया।
2: हाँ जी, मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, पर मुझे इस मुल्क में कमज़ोर तर उसने किया।
3: उसने किया,
2: किया। राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए, राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए, मुझको सीधे रास्ते से दरबदर उसने किया।
3: उसी
2: ने अब फिर ना पूछे, वही करता है जो करता
3: है।
2: शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे शहर में ना मोतबर उसने किया। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मनीर, शहर पे जुल्म मेरे नाम पर उसने किया।
3: वाह,
2: तो ये कहानी है।
3: बहुत खूब, बहुत।
2: तो कितनी देर हमारे पास
3: प्रोग्राम का वक्त पूरा होता जा रहा है।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो एक नगमा बाकी है।
2: अच्छा अच्छा, चलो ठीक है।
3: मेरे ख्याल के नगमे के साथ साथ
2: हम लोग अपने सामीन से इजाज़त चाहें फिर
3: जी। बिल्कुल।
2: और नगमा कौन सा है?
3: नगमा
2: तलत महमूद का है? नहीं
3: नहीं नहीं,
2: अब
3: तो दूसरा है, मैंने आपके लिए पेश कर रहा है, तैयार किया है आयशा भोसले का।
2: अच्छा चलो ठीक है, उनको बड़ी देर से उनकी आवाज़ नहीं सुन।
3: हाँ हाँ, तो आयशा भोसले की आवाज़ से है।
2: अच्छा,
3: तो इसी के साथ अपने सामीन से इजाज़त।
2: हाँ, इजाज़त चाहते हैं और उनके लिए दुआ खैर करते हैं, और उनको प्यार से हौसला अफजा साए, अपना अपने हौसला बुलंद रहें, कोई की सदा नहीं है, रहे नाम अल्लाह,
3: तो
2: घबराने की ज़रूरत नहीं
3: है। अनटिल नेक्स्ट टाइम,
2: अनटिल नेक्स्ट टाइम, और फिर मिलेंगे।
3: खुदा हाफिज़।
2: खुदा हाफिज़।

0: Cobbett Road Library is now open to the public. The library is the perfect place for a quiet read, family activities, children's day out, borrowing your favourite book to take home, or simply to search online for jobs. Visit the brand new library at Cobbett Road, Bitton Park, Southampton. On FM 99.8, DAB, on your smart speaker, and online around the world. Hours FM News.
1: Fears of a lost generation of young people, more than a million not working or learning for the first time in over a decade. A review out today by former Health Minister Alan Milburn says the UK's youth unemployment crisis is costing the country £125 billion a year, but he says the impact is more than that.
2: But the principal cost isn't borne by the taxpayer, it's borne by the young person. Being neat has a long-term scarring impact. Cost to their confidence, cost to their health, cost to their future income.
1: The government says the stark findings are why they're taking action. Thousands of people in Kent remain without water supply today. South East Water says reservoirs have reached a critical level after the hot bank holiday weekend. A man's been found guilty of murdering a student with a Sikh ceremonial knife. Henry Nowak was stabbed five times in the attack in Essex back in December. 23-year-old Vikram Digwar claimed afterwards he'd been the victim of a racist attack. And the Prime Minister's joined calls for the Champions League final to be free to watch on the telly this weekend. Sir Keir Starmer says it's important to put fans first. From Radio News Hub, I'm Phil Towers.
3: If you bought a home on a holiday park in the UK, what you thought you were getting may not be what you ended up with. From unexpected site fee increases, running costs, a huge depreciation in value, many owners feel they've been missold. If you think this might be you, holidayparkadvicecentre.co.uk could help you receive the compensation you're entitled to. Text JUSTICE to 78900 to find out more. That's JUSTICE to 78900.
4: Would you like to take up Tai Chi? Tai Chi classes are available at Cobbett Road Hub and Library with Charlie, and you can park on Cobbett Road or nearby at Bitton Station. For more information, contact Cobbett Road Hub and Library.
0: 99.8 FM and online around the world and on digital DAB radio in South Hampshire. That was Southampton's Hours FM News.
5: Adab, namaskar, satyakar, khimcho. शामिन आप हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है एक बार फिर शेर व नगमा सुनना शुरू कर चुके हैं जो आज आप तक आवाज़ रेडियो साउथहैम्पटन की मार्फत से पहुंचाया जा रहा है और मैं हूं आपका होस्ट जेरी और मेरे साथ स्टूडियो में है आवाज़ रेडियो के डायरेक्टर अली बेग साहब और मेरे हेडमास्टर साहब.
6: ओह नो, मैं सोच रहा था कि आज हेडमास्टर भूल गए.
5: जी नहीं, आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को ईद उल अदा के बारे में थोड़ा सा बताएं.
6: जी, सबसे पहले तो हम अपने सामिंग को सबको ईद मुबारक बोलते हैं.
5: हाँ, पूरे आवाज़ रेडियो की
6: पूरे आवाज़ टीम की तरफ से ईद मुबारक और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और ऑफ कोर्स आवाज़ के साथ आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी. तो कुछ आप मैसेजेस अगर ईद के देना चाहें तो आप हमें स्टूडियो में भी कांटेक्ट कर सकते हैं 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914400. तो जैसा ये ईद जो है ये दो ईद होती है इस्लामिक कैलेंडर में दो ईद होती हैं.
5: जी,
6: तो एक तो होती है ईद अल फितर.
5: जी,
6: ईद अल फितर जो है वो होती है जब हम रोज़े रखते हैं.
5: जी,
6: माह रमज़ान के दौरान उसके बाद.
5: जी,
6: तो वो उसको कहते हैं हम छोटी ईद उसको छोटी ईद कहते हैं. तो ये जो है ये है बड़ी ईद, ईद अल अदा. ये जो अब हुई है इसको कहते हैं ईद अल अदा.
5: ईद अल अदा.
6: तो ये है बड़ी ईद.
5: बड़ी ईद.
6: तो ये बड़ी ईद इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ईद अल अदा का मतलब फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस
7: सैक्रिफाइस
6: तो इसमें हम सैक्रिफाइस करते हैं जो लोग कुछ लोग हज के ऊपर जाते हैं
7: जी
6: तो वहाँ सैक्रिफाइस करते हैं और कुछ लोग जो नहीं जा सकते वो यहाँ जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं तो ये जो है ये था जब इस्लाम में जो जो इसकी बैकग्राउंड है वो है जब हमारा प्रॉफिट इब्राहिम
7: जी
6: जिसको हम इस अरबी में
7: इब्राहिम कहते हैं
6: जी उसका बेटा जो है जब खुदा ने उसको पूछा कि सबसे ज़्यादा प्यारा आपको क्या है तो वो मुझे जो है ना उसकी सैक्रिफाइस मुझे करो
7: उसकी
6: कुर्बानी दे तो उसने बहुत सोचा तो उसने कहा कि नहीं सबसे ज़्यादा मुझे मेरा बेटा प्यारा है तो वो भी क्योंकि अल्लाह का नबी था प्रॉफिट है तो उसने उसकी पूरी फेथ ईमान जो है वो खुदा पर है तो उसने कहा कि नहीं अगर खुदा ने कहा तो फिर मैंने ये काम करना है तो
7: उसने
6: फिर अपना बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था तो जैसे उसने कुर्बानी उसने एक शर्त रखी थी कि मेरे आंखों में पट्टी बांध दो तो ताकि मैं बेटे को बाप जो है बेटे को ना देखे तो उसने फिर जब ये सैक्रिफाइस कर रहा था तो अल्लाह ने फिर उसके बेटे को बचा दिया और वहाँ उसकी जगह पे एक बकरी रख दी तो तब से अब तक और ये एक सैक्रिफाइस जो है ये हर ईद के ऊपर होता है लेकिन इस सैक्रिफाइस से पहले हम करते हैं हज
7: अच्छा
6: तो हज का महीना जो है उसमें ये फिर काफ़ी जो है हमारे रस्में होते हैं रीत होते हैं जो भी हम कहते हैं इसको तो कस्टम्स जो है वो भी आप कहते हैं वो हम जैसे जैसे लिखा है इमाम साहब हमें बताते हैं तो वो हम पूरा करने के बाद तो फिर ये सैक्रिफाइस बाद में होते हैं ये एक बहुत बड़ी मतलब इस्लाम में तो लाखों के हिसाब से लोग जो है इस वक्त मक्के और मदीने में जाते हैं
7: गए हुए हम मैं आपको बताऊं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है
6: जी
7: पंजाब लुधियाना में
6: जी
7: अब्दुल गफार अंसारी
6: जी
7: वो भी हज में गए हुए हैं
6: ओ माशाल्लाह
7: वो और उनकी
6: दोस्त को मुबारक हो हज मुबारक
7: जी हाँ तो मैं पिछले महीने जब वहाँ था उनके पास लुधियाना में
6: जी
7: तो तब वो तैयारी कर रहे थे
6: ओके
7: जाने की
6: जी जी
7: तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा जी मुझे भी मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में
6: बेशक
7: याद रखिएगा
6: बेशक
7: तो ये कुछ बात थी जो अली भाई आपको बता रहे थे ईद के बारे में
6: जी।
7: तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये कुछ अशायर हैं ईद के मुतल्लक कि चांद की रोशनी से नूर मिले आपको
6: वाह
7: चांद की रोशनी से नूर मिले आपको हर दुआ में मंजिल मिले आपको कभी ना दूर हो खुशियां आपके घर से ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद आपको
6: वाह बहुत खूब
7: और अगला शेर है कि अल्लाह की रहमत बरसे आपके घर अल्लाह की रहमत बरसे आपके घर खुशियां आए हर दिन बेअसर
6: वाह
7: दुआ है हमारी दिल से हर बार मुबारक हो आपको बकरीद का त्यौहार
6: वाह वाह वाह वा, सही है
7: शुक्रिया जी और सज गई है खुशियों की महफिल सज गई है खुशियों की महफिल हर तरफ फैली है प्यार की मंजिल कबूल हो आपकी हर कुर्बानी ईद मुबारक कहता है ये दिल
6: क्या बात है
7: और चांद से रोशन हो हर राह आपकी चांद से रोशन हो हर राह आपकी हर दुआ कबूल हो आपकी عید الاضحیٰ خوشیاں لائے بے حساب، بس یہی دعا ہے ہماری۔
8: واہ واہ،
7: بقرعید مبارک سب سننے والوں کو۔
8: واہ واہ، بہت خوب۔
7: اور نہ کوئی غم ہو نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی غم ہو نہ کوئی پریشانی، ہر دن آئے خوشیوں کی روانی، اللہ سے بس یہی ہے دعا، عید الاضحیٰ لائے آپ کی زندگی میں نئی کہانی۔
8: واہ واہ واہ واہ، بہت خوب،
7: شکریہ جی۔ ہر خواہش و منظور آپ کی زندگی میں نئی کہانی۔
8: واہ واہ واہ واہ، بہت خوب،
7: شکریہ جی۔

0: वेलकम बैक शामिन, आपने अभी एक खूबसूरत सा नगमा सुना जो ईद मुबारक का था
1: जी।
0: और एक अफसोस भरी खबर है हमारे पास के उर्दू अदब के मशहूर शायर
1: जी
0: बशीर बदर साहब वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज के दिन 28 मई को उनका उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली। वो काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे
1: जी जी।
0: तो उनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम अपने सुनने वालों को देना चाहते हैं
1: जी।
0: कि सैयद मोहम्मद बशीर उर्फ बशीर बदर का जन्म
1: जी
0: 15 फरवरी 1935 को फैज़ाबाद, जिसे अब अयोध्या कहते हैं,
1: अच्छा,
0: में हुआ था
1: जी।
0: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए, एमए और फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की
1: जी।
0: और फिर उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर में रहे। उसके बाद 17 साल वो मेरठ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया था
1: जी।
0: और सन 1987 के मेरठ दंगों में उनका घर, उनकी किताबें और कुछ कलाम जो भी छपा नहीं था सब बर्बाद हो गया था
1: जी।
0: और वो उस और बशीर बदर साहब को उसका इतना सदमा लगा कि वो अपनी याददाश्त खो बैठे थे। और वो फैज़ाबाद छोड़ के भोपाल चले गए थे, मध्य प्रदेश
1: जी,
0: जो इंडियन साइड में है। तो वहाँ जाके वो काफ़ी सालों से वो डिमेंशिया में थे, याददाश्त नहीं थी उनकी
1: जी, जी।
0: तो उनकी किताब जो जिसका नाम आस है उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और बड़े अफसोस के साथ हम अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि आज 28 मई को भोपाल में ही अपने घर में 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अब वो हमारे बीच में नहीं है। आवाज़ रेडियो की सारी टीम बशीर बदर साहब को अपना खराज अकीदत पेश करती है
1: जी।
0: और उनके कुछ मशहूर शेर जो है हम अपने सुनने वालों के साथ साझा करना चाहेंगे
1: जी।
0: जो कुछ इस तरह है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
1: उजाले
0: अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: अली भाई, मैं आपको भी और अपने सुनने वालों को एक किस्सा
1: जी
0: बताता चलूं कि ये जो शेर है उनका बहुत मशहूर शेर है ये बशीर बदर साहब का
1: जी।
0: और एक दफ़ा उनके जो बेटे थे बशीर बदर साहब के, नुसरत बदर
1: जी,
0: वो दिलीप कुमार के पास ऑटोग्राफ लेने चले गए।
1: अच्छा।
0: तो दिलीप कुमार को पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये बशीर बदर साहब के बेटे हैं, नुसरत
1: जी।
0: बदर
1: जी।
0: तो उन्होंने उनको ऑटोग्राफ दे दिया और उसके नीचे ये शेर लिखा था उनका, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस,
0: तो
1: वेरी नाइस स्टोरी।
0: हालांकि देखिए कि वो दिलीप कुमार वो अपने आप में एक मुकाम है उनका
1: जी। बिल्कुल
0: जी हाँ,
1: बिल्कुल।
0: वो
1: और एक, उसने कैसे नोट कर
0: जी जी हाँ, वो कितनी इज्जत देते थे जो जो उर्दू अदब के जो शायर थे।
1: बिल्कुल।
0: तो और ऐसा भी मेरा सुनना है, सुनने में आता है कि वो गुलजार साहब और दिलीप कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त होने के बावजूद भी अगर वो पहले मौजूद होते थे, दिलीप कुमार जहाँ पे कहीं मीटिंग या कहीं मिलना होता था, मुलाकात होती थी, जैसे गुलजार आते थे तो दिलीप कुमार उठ के खड़े हो जाते थे।
1: वाह, बहुत खूब। तब ये दोस्ती है,
0: ये दोस्ती है और एक एक, एक, एक इज्जत है अपनी दोस्ती में।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ, तो है। अगला शेर है बशीर बदर साहब का, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुजारिश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुजारिश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो।
1: वाह,
0: बहुत खूब। और अगला शेर है, शुक्रिया जी, लोग लुट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: लोग लुट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
1: जलाने में।
0: अली भाई, मेरा मानना है कि जैसे हमने अपने सुनने वालों को बताया कि उनके मेरठ के दंगों में उनका घर और उनकी किताबें और सब कुछ सारा सामान जला दिया गया था, मेरे हिसाब से ये जो शेर है, लोग लुट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, मेरे ख्याल में ये बशीर बदर साहब ने तब लिखा होगा ये शायर,
1: क्योंकि उसके साथ ये
0: थोड़ा रिलेटेड है, ताल्लुक रखता है। और अगला शेर है, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुंदर में मिला दरिया नहीं रहता।
1: बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी।
1: जी,
0: हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है।
1: जी,
0: हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
1: क्या बात है, जबरदस्त। तो अब जिस रास्ते पे जाएंगे रास्ता खुद बन जाएगा।
0: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
1: क्या बात है,
0: जबरदस्त, शुक्रिया जी। कमी में अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, बकौल बशीर बदर, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है।
1: बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
1: क्या बात,
0: ये कुछ शेर हैं बशीर बदर साहब के, जो काफ़ी मशहूर, जिनको लोगों ने बहुत प्यार दिया है।
1: जी जी।
0: जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा।
1: बहुत,
0: मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला।
1: क्या है,
0: अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला।
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर है। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा।
1: बहुत खूब,
0: मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है,
1: टूट भी सकती है, बेशक।
0: तो घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते।
1: जबरदस्त,
0: हाँ
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बिल्कुल सही बात है। हाँ, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। अजब चिराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, अजब चिराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ हवा से कहो बुझाए मुझको।
1: بہت گہرا ہے یہ.
0: جی جی ہاں بہت گہرا شعر ہے. اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا, اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا, مگر تمہاری طرح مجھ کو کون چاہے گا. دشمنی کا سفر ایک قدم تو قدم,
1: جی
0: تم بھی تھک جاؤ گے ہم بھی تھک جائیں گے. واہ, تو یہ چند شاعر تھے جو بشیر بدر صاحب کے
1: بہت خوب
0: متعلق رکھتے تھے.
1: جی
0: تو میرے خیال میں بڑھتے ایک نغمے کی طرف.
1: جی جی.
0: اور شامین, اگر آپ اپنے پسند کا کوئی نغمہ سننا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی شاعری ہے یا آپ کے پاس کوئی کہانی ہے کویتا ہے, تو آپ ہمیں فون کر دیجیے گا. ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 02381980072, اور واٹس ایپ ہے 07784691440.
1: بالکل,
0: ہمیں آپ کے کال کا انتظار رہے گا.
1: جی
0: اور بڑھتے ہیں کہ نغمے کی طرف.
1: لیجیے سر.

0: वेलकम बैक शामिन। अब मेरे सामने इंतखाब है परवीन शाकर का, पर उससे पहले एक मजाया
1: जी
0: है कि अगर डॉक्टर्स फिल्में बनाने लग जाए, जस्ट इमेजिन
1: ठीक है
0: कि अगर डॉक्टर लोग जो है वो फिल्में बनाने लग जाए तो उनकी जो फिल्मों के टाइटल हो गए
1: कुछ मेडिकल,
0: हाँ वो कैसे होंगे वो
1: जी,
0: जैसे कभी खुशी कभी गम, कभी खांसी कभी जुकाम,
1: ठीक है
0: कहो ना प्यार है, कहो ना जुकाम है,
1: कहो ना जुकाम है,
0: बीवी नंबर वन, टीबी नंबर वन,
1: ठीक है
0: हम दे दिल दे चुके सनम
1: जी,
0: हम ब्लड दे चुके सनम,
1: वो तो ठीक है,
0: रहना है तेरे दिल में, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना है हसीनों, बचना है मरीजों,
1: मरीजों सही है,
0: दिल तो पागल है सनम, दिल तो कमजोर है,
1: दिल सही है।
0: एक हसीना दो दीवानों,
1: हाँ जी,
0: एक मरीज दो किडनी,
1: सही।
0: तो शामिन ये कुछ मजाया था कि डॉक्टर अगर फिल्म बनाए तो उनके टाइटल क्या होंगे। अब मेरे सामने इंतखाब है परवीन शाकिर का
1: जी,
0: उससे पहले एक शेर, वाह वाह बाकमाल बाकी है इश्क की हम मिसाल बाकी है, वाह वाह बाकमाल बाकी है इश्क की हम मिसाल बाकी है, हुस्न वालों से कह दो ले जाए सर में दो चार बाल अभी बाकी है।
1: अच्छा ठीक है
0: तो पेशे खिदमत है परवीन शाकिर का कलाम
1: जी,
0: कुछ इस तरह, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा मसाला तो फूल का है, फूल के दर जाएगा,
1: बेशक वाह बहुत खूब
0: शुक्रिया जी, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा क्या खबर थी कि रंगे जाम में उतर जाएगा,
1: बेशक बहुत खूब
0: शुक्रिया। और अगला शेर है उनका, वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए, मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा,
1: बहुत खूब
0: शुक्रिया जी। और अगला शेर है, आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, आखिरश वो भी
1: कहीं रेत
0: पे बैठी होगी, आखिरश मीन्स आखिरकार
1: जी जी,
0: फाइनली आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा,
1: बहुत खूब,
0: मुझको तहजीब बरजख का बनाया वारिस, मुझको तहजीब बरजख का बनाया वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद से सर जाएगा,
1: बहुत खूब,
0: जुल्म में ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो ये कलाम था परवीन शाकिर का,
1: और परवीन शाकिर भी एक मानी हुई,
0: जी हाँ उनका बहुत उम्दा कलाम होता है,
1: बेशक,
0: और उर्दू के इतने गहरे लफ्ज़ होते हैं
1: जी,
0: उनको समझना और उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो भी बहुत मुश्किल होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो मेरे ख़्याल में आज का प्रोग्राम का टाइम
1: पूरा हो रहा है
0: पूरा हो रहा है
1: जी,
0: तो
1: تو اپنے سامعین سے اجازت لیتے ہیں.
0: ہاں جی.
1: تو یاد دلاتے ہیں اپنے سامعین سے کہ اس پروگرام میں اگر آپ حصہ لینا چاہیں تو ہمیں اچھا لگے گا.
0: جی.
1: تو ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہمیشہ کی طرح 0238198072. کسی بھی وقت آپ جو ہے وہ یہ ڈائل کر کے آپشن 4 کے اوپر جائیں اور اپنا میسج چھوڑ دیں, کچھ ہمارے جری صاحب کے لیے کچھ میسج چھوڑ دیں, کچھ سنانا ہو وہ قصہ واقعہ یا پھر کچھ شعر اپنا جو سنانا ہو تو اس میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں.
0: ادروائز جی ہاں,
1: ادروائز واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں 0778469144. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت. آفٹر دا بریک آ رہا ہے ہمارا رچرڈ جو کہ کر رہے
0: اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوئے گی ویروار
1: جی
0: 3 سے 4 پروگرام کا نام ہے ایک بار پھر شعر و نغمہ.
1: جی.
0: تب تک کے لیے خوش رہیے, آباد لیجیے, نیا نیا کچھ سیکھتے رہیے.
1: جی.
0: خدا حافظ.
1: خدا حافظ.

कल की पटरी धड़कन इसकी, चाय की टपरी महफिल इसकी, रौनक की देखो यहाँ भरमार है, लम्हों में यहाँ सालों की रफ्तार है।

साला ये शहर भी अजीब है, जन्नत से दूर पर मन्नत के करीब है, मांगता मेहनत और चलता सिर्फ नसीब है। बिल्डिंग तो सब बहुत सॉलिड है यहाँ,

कोई सगा नहीं, ऐसा कौन है जिसको मिली दगा नहीं। भूख से नहीं हमारा मारी और खुदगर्जी और लाचारी, पहले कौन आगे जाए, तेरी या मेरी गाड़ी। मुंबई।

0: उठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.

0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूमात उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से। मेहरबानी तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ, बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
0: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूं कि हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहां पर, उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी बखैर।
0: Thank you very much, ji. Take care, Allah Hafiz. Bye-bye.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio. The medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
5: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals.

0: आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
2: अस्सलाम वालेकुम। आज का जो कलाम है वो हम नात पढ़ेंगे, तो ये जो कलाम है ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का है, तो हम उन्हीं को ही ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे वालिद उस्ताद दिलदार हुसैन खां, जिन्होंने 35 साल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां के साथ तबले पे संगत की, तो आज वो हमारे साथ हारमोनियम पे संगत कर रहे हैं। तो ये जो नात हम रिकॉर्ड करेंगे ये इसरार हुसैन रिकॉर्ड्स, उस पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, पेशे खिदमत है।

0: आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया, अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।